0: अरे हबीबी,
1: हेलो हबीबी, हम तुनाई विनाडी हताई में पैतट ओए पैतट वेला वे टाइम जोन के वेनसक तेनवा ना अपने व्हाट्सएप मैसेज का दागन यान
0: ए पैतट वेनसक वेन विद्याक ने है भाई अपे यार मे रटवटा ने वे लोवटा इन कटिर नाम पोडी वेनसक वेन ते किला मम इतरा
1: एक तमे मम के मंग एक व्यंग्यार्थव कवि प्रकाश करे अपे अपे रटे वितरक ने मे आंग इन
0: के अन्न एक ने के
1: मे व्यंग्यार्थे यटि पेले अरु तेरु ने
0: सॉरी मकद व्यंजनार्थद मनोद
1: ुमारे
0: ජීවිතේ මල් මල් තාත්තා ඉන්නවා නම් තමයි එහෙනම් යව හොයලා දෙන්න තාත්තෙක් නෑ මගේ අරයව
1: තාත්තෙක් වෙන්න ඕනේ